0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: धर्मपुरी मावट्टम नल्लंपल्ली वट्टम तेक्कुपोतनल्लि ऊराட்சி தாதனாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்ரீ கொல்லாபுரி அம்மன் ஆலய மகா கும்பாபிஷேக விழா வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறுகிறது. அனைவரும் வருக, அம்மன் அருள் பெறுக.
4: வைக்கிங் பனியன்ஸ் அண்ட் பிரிக்ஸ் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் மாலை தென்றல் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்கிக் கொண்டிருப்போர் வைக்கிங் பனியன்ஸ் அண்ட் பிரிக்ஸ்.
5: ஐந்து மணி 17 நிமிடம், காற்றலையில் கேட்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் மாலை தென்றல் நிகழ்ச்சியை. அலங்கரிக்க வருகிறது அடுத்த பாடல், முதல் மரியாதை என்ற திரைப்படத்திலிருந்து.